जैसे चिचिप खंग जोंली लीचंग ग दा दबे छे रंग आनि न गोंजन जा दे जैसे चिचिप खंग ग जिनली टीन छु दि बा दंग लीशिक ग शावा यग पुर दब जी कोर जे न्यान सर सां बा दंग लीशिक जोंजन था जी लग दर जे लोंग इन चांग गु जोंग आ वर ड्री शिप शी नि ड्री चम चोंग ला सर तर जोली जेंग ग रि रि तुन ला सिम जी दंग केंदल दंग वा मा सल मांग वे थोन लिन पे जी दंग रे ग ली तुन ला सिम जी शी दे म ग खोंग ली वे पे म ग मी ली शी दंग ली तुन ला गर पल तुंग वे सो यी ग चार सन ला ड्री शिप शी नि ड्री चम चोंग 丁聪雷丹顿李西克呢蒙奇沙瓦银比李西克尊尊塔吉拉克特沙吉车顿德宗帝俺祖路维阿朗德李西克等冲兵牛姆这个李西克斯中格李西克拉格布尔等李杜拉尼克克里杰个写书学用尼拉克特沙吉拉李西克空气了比英德拉金特冷河南尼比村托维李西克白比文杰歇吉 李氏的各部动物建设提升的动画等李氏的立对接下部起码了提升的动画多么多不知道他是罗马所拿着李氏的绝密塔布那么解决吧所有的初期李氏的家具写和切的动机了嘎布顿李氏的李氏的南巴萨瓦的冷啊配件用的跟着当地俺做了李氏开恩了甘松写和切的动机 当日不讲个，我们和同工有个人的手中等价钱的等你，老百姓口中等专门的金库，你们这个写字，前头的当地，日军前卫力量在你手中，当时不得白给把马子，俺准备写下等，在你银头硬接了是东西。